प्रभु की जरा गल सुना दे संसार के विकारां दे बंधना तो जरा बचावे है कोई ऐसा सज्जन मित्र है को ऐसो हमरा मीत सकल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो जीत ओदे नाल पक्की सांझ पा श्लोक वारा ते वधीक पढ़ने साहिबा ने किया जे

तू बहुत सियाना है, बड़ा समझदार होगा, फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै ताहू खड़े सुजान बंजा एनी कपड़ी, जेड़े इन्हां पानियां चो लंघे होए ने किसे नवे पतन ते आ जावे, किसे नवे नदी दरिया ते पहुंच जावे, उथो लंघण दा मसला पैदा हो जावे ना, तू भावे किड्डा वड्डा तारू है फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै जेड़े इस राह तो लंघे, पता नहीं किथे भंवर होवे, किथे पानी दी की दशा होवे, इस राह विचो लंघन वास्ते चंगा रवे जे तू किसे तारू नूं जिहड़ा इथों लंघिया होवे उहनूं पुछ लवे इथों तूं किवें लंघिया सी, की हालत है। इसे तरह धर्म दे मार्ग ते बंदा किन्ना होशियार ते चलाक, धर्म दे मार्ग ते उहनां लोकां दे नाले गल कर लैणी, लालन रावया कवन गती री, तू किस तरह पति नाल प्यार कीता है, तू प्रभु नाल किस तरह प्यार पाया, प्रभु नाल तेरी सांझ किवें पक्की होई है, तू प्रभु नूं किवें पाया, सखी बतावो मुझे मतीरी, मैनू भी तू मत दे, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, जिन्हां सुहागणा ने घर स्वर्ग बना रखे, जिन्हां दे घर दे विचों खुशियां ते खेड़िया की खुशबू उठती है, उन्हां नूं पुछ लैणा चाहीदा है ये खुशबू तुहानूं किवें प्राप्त होई, इस घर नूं स्वर्ग तुसां किवें बनाया, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, जिन्हां घरां चो कलेश उठदा होवे, जिथे प्यार की कोई सांझ ना होवे,

कहन लगा मेरे कार बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रसादा नहीं छके, कहंदे ने तेरा कार सोतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो, इथे धन गुरु नानक साहब आए ने, ओ सोतक पातक नहीं मनदे। इथे एक गल याद रखना, जिथे कोई जन्म लवे उथे कहा जांदा है सूतक, जिथे कोई मरे उथे कहा जांदा है पातक। इस प्रेमी ने कहा तू दुखी ना हो, गुरु नानक साहब दे कोल जा, ओ सूतक पातक नहीं मनदे, इन्हां परमा वहमां विच नहीं पैंदे। ए प्रेमी धन गुरु नानक साहब दे कोल आया ते बेनती की, महाराज मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया पर ब्राह्मणा ने भोजन नहीं छके, कहंदे ने तेरा घर झूठा सूतक आला। धन गुरु नानक साहब ने अपने सिखा नूं प्यारियां नूं भेजिया, जाओ तुसी प्रशादा छके आओ। सिखा ने प्रशादा छकिया, उन्हां ब्राह्मणा नूं पता लगा ता उन्हां नूं इस गल दा मन विच बड़ा रोस जा गया। ए सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके धन गुरु नानक साहब दे कोल आए और गुस्से नाल कहन लगे, महाराज

जेड़ी विचार करनी है बैठ के करो, क्योंकि विचार बहके हुंदी है, शांत मन नाल हुंदी है, तलखी नाल नहीं।

महल मंदिर हर हर का तिसमह राखी जोत अपार तिसमह राखी जोत अपार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, कीर्तन द्वारा असी श्रवण कीता है हरमंदर दी महिमा साहिब श्री

राक्षस, जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हन, पहरावे भी वक्, देश भी वक्, और इन्हां चीजां दा असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा?

अल्लाह अपेक सोई कुरान ओ कुरान ओही हिंदू कुरान पढ़ दे मुसलमान कुरान पढ़ दे मुसलमान अल्लाह नु याद कर दे हिंदू राम नु याद कर दे ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लैण वाले है कुरान शरीफ पढ़न वाले है मुसलमान नु ए उपदेश हिंदू नु की उपदेश ऐ पुराण पढ़न वाले हिंदू ऐ राम नु याद करन वाले हिंदू अपने मन विच ए विचार कर एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है वो अपने अल्लाह नु याद करता है एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है वो अपने परमेश्वर नु याद करता है टंग दोनों दे अलग ने एक निवाज पढ़ता है एक पूजा करता है पर ए सोचे है दोनों दा मकसद की है मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है हिंदू अपने राम नु पिया याद करता है मकसद दोनों दा

खत्री ब्राह्मण शूद वैस और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तू चले आ रहे है पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन भाई साहब जी बयान कर दे चार वरन चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं,

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस विच पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे ते कदी भी

रोजे ईद निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ए जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा ए उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालम बादशाह सी उसने ए हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म दी रक्षा करो। तां गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म दी रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तों पहलां भी ठाकुर द्वारे ढाए जांदे रहे, भाई गुरदास जी बयान करते हैं।

इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी। राजे जुलमी हो गए, वजीर पाप कमान लग पे, अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नू लड़ाना, लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना।

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमात्मा रूपी नाम दवाजे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा मिल के इन्हां तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली।